एक रहे सब जान जान के लड़कों को ताड़ो मत ताड़ो मासू मैं बच्चे ने मारो मत माना कि गर्मी बहुत है लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूँ बेबी जैकेट उतारो मत